हरे केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गाय दर्शन प्रभु करुण छलीला उन्हीं को चल चोर प्रभु विषय अरुका कुन को।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

और इच्छा जो माने हो मेलो मेलो मेलो सुबह छोटो आल्ला छोटो आल्ला कृष्ण बाउसे और बाउसे सुजाता बिउले सरस्वती ने बिउले उबोट मालिंगा ल्याए हाम्रो मितले सा आजको

नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़बाट म बद्रीप्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 13 तारीख आषाढ़ 29 गते सोमवार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

राजे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जय नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समय।

मेरो नाम सूर्यबार थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जो दायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुमिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हर कलश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अद्वैत बलधाम अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बरजाओ ध्वज विराजई कांदे मुझे जनेव साजई शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र के काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हर्षियुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतम भाई सहज बदन तुम्हार जस गावे अस्क श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा हेम कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिलो ताई मधुफल जानु प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखबारे होतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रखे काउ को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगदेव जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जायी जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से सर्वसु करई संकट कटई मिर सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी मास होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सनाहरी चेरा किजनाथ हृदय मोहडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसवंश रूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंगबली।